0: से रंग में तर बतर होकर आ रही है रितु?
1: क्या बताऊँ अम्मा, रमा के घर गई थी किताब लेने, मगर रास्ते में ही मोहल्ले के लड़कों ने घेर लिया।
0: अच्छा, फिर क्या किया उन्होंने?
1: होली खेली मुझसे।
0: अरे तो तूने रोका क्यों नहीं?
1: रोका था अम्मा, बहुत रोका था। मैंने कहा

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,